0: की खिंचत सफी जी रेडियो और मैं हूं प्रोग्राम स्टार्ट अविनेश हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के सेल लाइव स्ट्रीम में मैं हूं प्रवीण डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 698 जो एपिसोड है विद प्लेन्स मीडिया जी हाँ मैं हूं प्रवीण डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में पैनल में साथ देने वाले हैं साहिल और हम कुछ गेस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं सो देयर बी अ गेस्ट टुडे हम जिसके साथ में बात करेंगे एंड इट इज विल बी क्वाइट डिफरेंट टू द अदर इंटरव्यूज बिकॉज दिस टाइम शायद के बाद में इवन साहिल माइट अग्री की पहली मरतबा है कि जो हमारा गेस्ट है जिससे हम इंटरव्यू या बातचीत करने वाले हैं शी इज लाइक ITS ओल्ड
1: जी हाँ
0: And definitely, so that will be quite exciting. So we'll be talking to Hamuse Kenge Little Aroha, and she is the junior Miss Aotearoa, New Zealand 2026 winner. It काफी बड़ी बात है कि someone goes from Christchurch or and she competes with 14 other participants and brings the crown back to Christchurch. So congratulations to Aroha, and उसे हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, and she'll be coming with her parents Kiran. Proud parents Kiran and Maitri. Ji ha, aur is program mein hum we will try to keep that interview for maybe 15-20 minutes kyunki uske baad mein we are going to play a recorded interview jo maine kiya tha with honorable Todd McLeish the मिनिस्टर जो एसोसिएट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड द मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड फॉरेस्ट्री उसे हम बातचीत जो किए थे तो वो आपको हम इस फ्रिक्वेंसी में सुनाएंगे और अगर आपका यूट्यूब जो वीडियो अगर देखना है देन इट्स ऑन यूट्यूब आप बाद में देख सकते हो एंड जो लिंक वगैरह हम डाल देंगे when we complete the Facebook जो वीडियो बट इस प्रोग्राम में यू आर गोइंग टू हियर दैट एज वेल जी हाँ जिसमें हम जो बात किए थे अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जी हाँ कुछ चर्चे में है बट आई थिंक इन दैट इंटरव्यू वी ग्लेट क्योंकि वी कुड हियर और टेक द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मिनिस्टर और उसने हमें जो जानकारी दी है कि व्हाट इट मींस फॉर न्यूजीलैंड बट एट द सेम टाइम व्हाट इट मींस फॉर इंडिया और अगर कुछ प्रोग्राम्स है जहां पे आप जाना चाहते हो या आपके पास अगर वक्त हो इफ यू हैव मिस्ड आउट देन डोंट फॉरगेट मदर्स डे इज हैपनिंग टुनाइट एट प्रेबल्टन हॉल 617 स्प्रिंग रोड जो ये अरेंज्ड बाय कैंटरबरी मेलोडी मेकर्स यू कैन गो एंड हैव पार्टिसिपेट और हैव फन और दूसरी जो जानकारी में देनी है विच इज कमिंग अप जो नेक्स्ट वीक रहेगा 16th ऑफ मई माँ भागवती चौकी जो पंडित अश्वनी महाराज जी आने वाले हैं दैट इज गोइंग टू हैपन हियर टेम्पलटन हॉल तो वहाँ पे आप जा सकते हो और भी जो काफी इवेंट्स है अनफॉर्चुनेटली आज तो हम बहुत नहीं कवर कर पाएंगे जैसे जो बांसुरी है इट्स थिएट्रिकल हम कहेंगे ड्रामा है वर्ल्ड ड्रमिंग फेस्टिवल है एंड देयर इज अदर थिंग्स कमिंग अप लाइक हरियाली तीज का भी डेट्स वगैरह निकल चुका है मैंने आज देखा जो सेल्विन तीज उसका भी जो डेट्स निकल चुका है सो दोस्त जो आपको पोस्टर्स हमारे फेसबुक पेज पे मिलेंगे जलसा फीजी रेडियो फेसबुक पेज उस पे आप जो जानकारी ले सकते हो एंड आज हमारे पास बहुत समय तो नहीं होगा बट जस्ट टू क्विकली साहिल द रिजल्ट बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज लास्ट नाइट
1: काफी अच्छा रहा 36-20